यमुना दे किनारे कवि दरबार लांदा है ते जदों कवि जितदे ने उन्हां दीआं झोलियां सोने दीआं मोहरां नाल भर दिंदा है। कदी तको आनंदपुर दी धरती नूं कोई भुखा हुंदा है ओनू पेट भर के भोजन मिलदा है। कदी तको उस चांदनी सोहनी चाननी नूं कदी तको चंदन दी चौंकी नूं कदी देखो प्रसादी हाथी नूं उपर गुरदेव ते चौर करदिआं कदी तको कलकी वाले दे चरणां विच हीरे ते मोती भेट करदिआं कदी तको आनंदपुर दी धरती ते साहिब आनंदगढ़ दे किले विच आराम करदे ने ते सोहनी सेज ए ते जेड़े गुरु के सिख बार ने कहन लगे पहचानो अज ओही मूर्ति जे जेड़ी माछीवाड़े दे जंगल ने नंगे चरने शीश ते केसगीए जामा लीरो लीरे ते साहिब दे चरणा दीआं तलियां दे विचों खून सिम सिम के सुक चुका है। थां थां ते छाले ने शायद भाई नंद लाल ने यही गल कही सी मेरे दात्या मैं तेनू पहचानागा जे तू सूफी बन जाए मैं ता भी तेनू पहचानागा तू गुरु गोबिंद सिंह जे ताज ला के बह जाए मैं ता भी पहचानागा तू मेरा पातशाह है ते जे किते दात्या तू नंगे पैर भी तुरदा होवे ते पहचानन वाली अख कदी शक नहीं कह करेगी कहगी ए ओही गुरु गोबिंद सिंह जेड़ा वेख सारा यार गुरु गोबिंद सिंह ए ओही गुरु गोबिंद सिंह जेड़ा बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह ताई ता भाई साहब ने अपनी रचना विच कहा सी गाहे सूफी गाहे जाहद गाहे कलंदर मेशवद रंग हाए मुख्तलिफ दारत बुते अयार मां खे मेरे माही किते सूफी बन किते शरई बन ते किते मस्ताना बन जा मैं तेनू जरूर पछाणा। साहब जी उथे टिके ने कहिंदे ने उधर प्यारे लभदे पए ने तिन्ने सिख मिल गए ने भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह पर कलगी वाला नहीं मिलिया। कहिंदे ने बोलते नहीं अपनी चुप दे विच ही गल्लां करी जांदे ने इन्नी देर नूं लंघदियां लंघदियां सामने ओह कोई चीज चमकी है ते की तकिया भाई मान सिंह ने ए लिशक काढ़ी है ते जदों सामने गए गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपान दे विच हीरा पिया चमकदा मुठ भी चमकदा। कहिंदे ने उस वक्त मान सिंह जेड़ा अहिल मान सिंह है जेड़ा अजित मान सिंह है जेड़ा अडोल मान सिंह है जदों साहिब दी हालत तकी चरण तके एहो जै रात बंदे दियां अखां विचों भी नीर दी चढ़ी लग गई। कहिंदे ने उस वक्त आवाज दित्ती भाई दया सिंह प्यारा जी मिल गए ने प्रीतम जी मिल गए ने भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह आए नमस्कार कीती चरणा ते ते जिन्हां चरणा नूं शाम सौण लग्या गुरु प्यारे सेवा करदे सन उन्हां चरणा नूं जदों हाथ लाया ते की तकिया थां थां ते जख्म ने कंडे चुभे ने खून सिमदा रिहा ना गया चरणा जेड़ियां थावां बचियां ने उन्हां नूं मलदे ने उन्हां नूं घुटदे ने ते कहिंदे जदों तलियां नूं घुटिया ते मेरे कलगी वाले दे नेत्र खुले ने उठ के तकिया ते किन्ना नूं देखदे ने प्यारे भाई दया सिंह बैठे ने भाई धर्म सिंह बैठे ने ते उन्हां दे मन ते की बीती होवेगी दो पुत्र शहीद हो गए ने अपने शरीर ते कष्टे समझ कोई नहीं छोटे किधर ने बोले कुछ नहीं पर चुप ने। साहब ने चुप नूं तोड़ दिया क्या दया सिंह जी कि मैनू घुट के छाती नाल मिलोगे नहीं घुट के छाती नाल भाई दया सिंह नूं लाया धर्म सिंह नूं लाया भाई मान सिंह नूं लाया ते बहिंदिया एक गल कही दया सिंह जी प्यास लगी है कि तू पानी मिलेगा। सिख विद्वान कहिंदे ने उस वक्त मेरे गुरदेव तो तुरिया नहीं सी जांदा उठ नहीं सन सकदे कशहरा जेड़ा है ओ गोडे तो थले मास विच तस चुका है लहू लगा होया है साहिब दे इस पवित्र लता नूं। कहिंदे ने उस वक्त भाई मान सिंह ने ना गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अपने मोढ़िया ते चुकिया सी विद्वान मानते ने मोढ़िया ते चुका ते खूह को लिया के खूह दीआं टिंडां विचों पानी कढ़िया ते अपने प्रीतम माही दे मुख नूं हथ ला के इन्हां गुरु के प्यारिया ने जल छकाया। वेखो सिखा उन्हां दा सिदक जदों आनंदपुर वसदा रसदा उदों भी गुरु दे ने जे अज सब कुछ लुट पुट लग्या जालम तां भी गुरु दे ने ते जे अज चार चपेरे लोग घेर के गुरु नूं खत्म करना चाहते ने तां भी उह गुरु दे ने सब कुछ अपना आप कुरबान करी बैठे ने इन्हां नूं कहिंदे ने तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्निया पाईए। हद हो गई एक खेली मैं अर्ज करा सानू

गुर अमरदास डिठै मिलै कान हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुदर त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै।

परम सम्मान योग युग युग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाही मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतिया ने कल दा दिन जो बतीत होया है कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदो आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलखण सानू जड़ी नजर आउंदी है इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 60 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने ए 70-72 गया है। 12 साल गागर ढो के 72 साल का बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकता है। यही विलखणता है कि इतने 5 साल से 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते हैं ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है। जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं इस दी विचार इस दिन के संबंध में गुरु कृपा न आप विचारने कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नू गुरु अमरदास जी के चरणों में अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना ओ कहा होया केवल तर्क दी बिरती वाला लगेगा ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास दी कृपा वरसेगी। विचार आरंभण तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे हुए है। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए की तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए के पिंड बासर के 1479 नू होया 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वो गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक ये कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल, जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े आ, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथिया है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना, दान पुन करना, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरत्या, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना जाके उत्थे दान पुन भी करना। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना। ते अज 20वीं वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पे आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही सियाणा विद्वान पंडित है, जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है, ते इन्हें अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जाण ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी दी सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते दी थकावट दूर कर ली, जितने दिन भी कोई रहना चाहे। ते ओह विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी, ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि ओदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या ओदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो ये बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज ए भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर ओदी सरां दे अंदर उन्हां ने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कहन लगे गर्मी दे दिन सन, ते बाबा अमरदास जी ओदे घर तो बाहर निकल के ओदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए, ते गर्मी अतदी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख दी छां थले टिके ने, ते किन्ने इस पंडित दा नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी ए। ए पंडित अपने घर तो बाहर निकलिया, बाग विच पए हुए यात्रियां दे कोलो लंघिया, ते ज्योतिष विद्या दा माहिर किन्ने उस वक्त इस पंडित ने ना बाबा अमरदास जी नूं लेटिया देखिया, ते बाबा जी वक्खी परने हो के पए ने, चरणा दियां दोनों तलियां दिसदियां पईयां ने। विद्वान पंडित सी, बाबा जी दे चरणा दी तलियां विच उहने पद्म देखिया, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे एदे चरणा दे अंदर पद्म है ते एक गल ध्यान विच रखना, जां ते ए आउण वाले समय दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा,
ते जां ए आउन वाले समय दे अंदर अध्यात्म वर्ती बहुत उच्चा महापुरुष होवेगा, कितना समा वह बाबा जी दे चरणा दे पद्म नू देखदा रहा। बाबा अमरदास जी उठे ते उठ के जदो अगे तुरन लगे ते उस वक्त सोचिया जिस पंडित ने इतनी सेवा कीती है कितना चंगा होवे, जान लग्या मैं कुछ ना कुछ इन्हां नू माया दे दिया। अपनी बांसुली थैली खोली, कुछ कु माया आवाज दे के कहन लगे, पंडित जी तुसी आउन जान वाले यात्री नू विश्राम लई थां देंदे हो ते मैं चाहना कुछ सेवा तुहाडी करां। ते उस वक्त इस दुर्गो पंडित ने हाथ जोड़ के कहा, कहन लगे, बजुर्गा अज नहीं कदी समा आउणा है, मेरी गल याद रखी, जां तां बनेगा बहुत उच्चा भारी सम्राट तू राजा ते जां बनेगा बहुत उच्चा अध्यात्मक वर्ती महापुरुष, मैं तेरे दर ते मंगण आवांगा। अज मैं थैली दे पैसे नहीं लैणे, जितन ए रेखा रेखा फलेगी जितन तेनू भाग लगेगा उदन मैं झोली अड के अपने आप तेरे दर तो मंगण वास्ते आवा। सतगुरु बाबा अमरदास मन विच प्रसन्न भी होए, कहन लगे, पंडित मैं ता कितना समा होया गंगा इशनान करन जाना वा, अजे तक ओदे दीदार नहीं होए, अजे तक मेरे अंदर दा टिकाओ नहीं मैनू मिलिया, ते ए रेखा की करेगी। ते पंडित ने कहा, कदी समा आवेगा ए रेखा भाग जरूर लाएगी, ए चक्कर चिन्ह जेड़े मैं पढ़े ने बिल्कुल सच होणगे। कहिंदे ने बाबा अमरदास वापस पिंड बासर के आउंदे पए ने, जिथों गुरगद्दी वाले पासे नूं आपां अज तुरना, जदों वापस आउंदे पए ने ते एक ब्रह्मचारी मिले है। इतिहास इहदे बारे खामोश है कि उस ब्रह्मचारी का नाम की सी, इन्हां ते दस दिता जिन्हें पद्म पढ़िया है पद्म देखिया उहदा नाम दुर्गोवे, पर उस ब्रह्मचारी का नाम नहीं पता जिन्हें बाबे अमरदास के नाल कुछ समा संगत की थी। भाई वीर सिंह लिखते ने, करीब एक महीना ब्रह्मचारी बाबा अमरदास जी दे नाल रहे, तुरदियां तुरदियां सफर मकांदियां ये अपने पिंड बासर के आ गए। ते अज ब्रह्मचारी दी शाम नू जदों जल पानी नाल सेवा बाबा अमरदास करन लगे, ते इस ब्रह्मचारी ने पानी दा गिलास हाथ विच पकड़िया ते इको दम सब तो पहला ए सवाल कीता, बाबा आपां कितने दिनां तो इकट्ठे तुरे आउने आ, तू प्रभु दियां बातां भी बड़ियां करने, तू गंगा मैया दी सिफत दे गीत भी गाने, पर मैनू अजे तक तेरे तो एक गल पुछनी याद नहीं रही, मैनू दसेगा तेरे गुरु दा नाम की है, केड़ा गुरु वे जिदे चरणा विच टेक के तू दात लईए, केड़ा गुरु वे जिदे मंत्र नू तू जपना है। ते उस वक्त बाबे अमरदास दे पैरां थल्ले जमीन निकल गई, खिरदा कंब उठिया। ब्रह्मचारी कहिंदा, बाबा तू बोलदा नहीं, दस पां सही तेरे गुरु दा नाम की है। ते अखां विच नीर भर के कहन लगे, अजे तक नगुरा हूं, अजे तक मालक वाला नहीं, लभना ते प्यावां पर अजे तक वह मैनू लभिया नहीं। जदों इन्ने शब्द सुने ते ब्रह्मचारी ने यही गल कही, कहन लगे, हे प्रभु मैनू बचा दई, ए बंदा इशनान भी गंगा दा कर दई, बातां भी तेरे घर दियां करदा, पर अजे तक गुरु वाला नहीं बनिया, इसो जै नगुरे दी संगत करके मेरा खादा पीता भी परवान नहीं, इस नगुरे दे हाथ दा की खाना। इन्नी गल जान लग्या कह गया अमरदास अपने केसां वल तक, केस तेरे कालियां तो दुध वर्गे सफेद हो गए ने। हुण याद रखी, जवानी तो बाद जिहड़ा बुढ़ेपा है इह केवल मौत दी इंतजार है, बचपन चला गया जवानी चली गई, हुण बुढ़ेपे ने तेरे ते आके प्रभाव पाया, जे अजे तक भी गुरु वाला नहीं बनिया ते जदों ये जन्म चला गया फिर गुरु वाला किवें बने, अजे तक तू नगुरे। बस इन्ने शब्द कह गया कि तू अजे तक भी नगुरे, ते बाबे अमरदास नूं इन्नी सत वज गई, इनू चैन ना आया। ते कई वारी किसे बंदे दी छोटी जी गल भी अंदर इन्ना कु असर कर दीए, बंदा कितने समय लिए उस गल नूं सोचण लई मजबूर हो जांदा। कहन लगा, अजे तक तू गुरु वाला नहीं, देख बुढ़ेपा आ गया। ते सतगुरु ने बाणी विच बचन भी बड़े प्यारे कहे, कहिंदे ने बंदे नूं इक आस हुंदी है,
साहब कहिंदे ने जदों जन्म होया है ना ते बचपन विच इक आस है जे कुछ दिन खेडण दे ने खाण पीण दे ने ते अजे मेरे ते जवानी आउणी है ते जवानी तो बाद इस मनुख नूं इक आस है कि पुत्तर धीआं वड्डे होए अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना मेरे ते बुढ़ेपा आउणा ते गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने उस बंदे नूं मैं पुछ के देखां जिन्हें बचपन का समा जवानी की इंतजार विच बतीत किया जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समय विच बतीत कर दिती हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा ते पुछया सतगुरु तुसी दसो कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही फसल बीजिए एक आस है जे जमीन विचों निकलनी है अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना जेड़ी फसल जमीन विचों निकल आवे एक आस है अजे ने डटरी होना अजे ने कच्ची अजे पक्की होना ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है अज जा कल जिमीदार आवेगा अपने मजदूरां नू लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नू घर लै जाए। कहन लगे सजना तू ता परमेश्वर दी फसल है ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है बचपन ओ कच्ची फसल ही जवानी डडरी फसल ही ते जदों केस कालियां तो चिट्टे हो गए उदों फसल पक चुकी है उदों तां सिर्फ इको ही आस है अज जां कल मौत जिमीदार ने आउणा उहने इस फसल नूं कट के अपने नाल लै जाणा। पक्की हुई फसल केवल कत्ती जांदी है पक्की तो बाद की करांगे। हजूर ने बाणी विच क्या हरी नाहे ना डडरी इहदा अर्थ है जे हरी फसल नहीं कत्ती गई ते डडरी दी आस ना करी हो सकदा डडरी तो पहला कोई कट के लै जाए। हरी नाहे ना डडरी पक्की वड्डन हार लै लै दात पहोतिया लावे कर तैयार जा हुक्म होवा किसान दा ता लुण मिणिया खितार जितन रब ने हुक्म कर दिता ओदू बाद इस फसल नू वाढी जरूर पाएगी। बाबा अमरदास नू सिर्फ इन्नी कु गल ठोकर मार गई कि मना तू गुरु तो विछड़े तू रब तो विछड़े ते मैं कई बारी अर्ज करना हुना जदों ए महसूस अंदर हो जाए ना बाणी पढ़ने कि मैं रब तो विछड़िया वा मैं गुरु तो विछड़िया वा ते एक आस करियो कि परमार्थ का एक कदम आपा ने पट ले। दुनिया नू ता ए भी पता नहीं असी रब तो विछड़िया कि नहीं लोकां नू ता ए भी समझ नहीं मेरा गुरु की ते मैं गुरु तो विछड़िया वा। जिस बंदे नू एनी समझ पै जाए ठोकर वज के मैं अजे गुरु नाल नहीं जुड़िया जिस बंदे नू रोग दा पता लग गया ओ वैद नू भी जरूर लभेगा जिस बंदे नू ए ही पता नहीं मैं रोगी हां उहने वैद कोल जाके करना की। बाबे अमरदास नू एनी कु समझ पै गई तू प्रभु तो विछड़िया ते गुरु कृपा करे हर बंदे नू ए समझ पै जाए। कबीर साहब ने बाणी विच इक पवित्र बचन कहा है कहिंदे ने जदों शाम पैंदी है ना उन्हां ने उस वक्त दे समय नू मुख रख के बचन उचारिया कहिंदे ने शाम पैंदी है व्यापारी भी अपने टिकाणे ते रात नू आराम करदा है तुरन वाला राही भी किसे सराम विच रुक जांदा है जिमीदार भी शाम नू थक के घर आ के टिक जांदा है दुकानदार चाकरी करन वाले भी ज्यादातर रात नू घर आ टिकदे ने पर कबीर साहब कहिंदे ने रात नू सारे आराम करदे ने पर एक आवाज रात नू मेरे कन्नां विच गूंजदी है ते सोचना वा ए कौन है जिन्हू रात भी आराम नहीं ए रात भी उची उची पुकारदा है। ते कहिंदे ने जदों इस आवाज दी सेध नू मैं गया ते की देखिया एक चकवी बड़ी उची उची पुकारदी पई है पता नहीं कुदरत दा एक नेम है जदों शाम पैंदी है चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै जांदा है। विद्वान सज्जना ने बाणी विच इहदियां बड़ियां उदाहरणां ने दरियावां दे किनारियां ते पंछी रहिंदे ने जदों रात पैंदी है चकवी दरिया दे खब्बे नूं चली जांदी है चकवा सज्जे नूं चला जांदा है एक दूजे नूं पुकारदे ने पर हैरानगी दी बात एक दूजे दी आवाज सुन के एक दूजे नूं मिल जांदे ने मिलाप हुंदा इन्हां दा दरिया विच उड्डनिया खब्बा सज्जे नूं चला जांदा है सज्जा खब्बे नूं चला जांदा है सारी रात चक्कर करदे रहिंदे ने पर मिलाप हुंदा नहीं। बाबा कबीर कहिंदे ने मैं चकवी नूं देखिया रात उची उची पुकारे मैं क्या सबर नाल टिक जा सारी दुनिया आराम करदी तेनू चैन नहीं ते चकवी ने कहा जिदा प्यारा विछड़ जाए ओनू टिका ते चैन किथे
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕਵੀ ਦੇਖ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੂਰਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਭਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕਿਉਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਛੜਦੀ ਏ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇਵਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਚੱਕ ਈ ਜੋ ਨਿਸ ਬਿਛੜੈ ਨਿਸ ਦਰ ਤੇ ਰਾਤ ਚੱਕਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੀ ਏ ਆਏ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੋ ਨਰ ਵਿਛੜੇ ਰਾਮ ਸਿਓ ਨਾ ਦਿਨ ਮਿਲੈ ਨਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੇ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਵੀ ਨਗੁਰਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰਨਾ ਕਦੀ ਰੋ ਪੈਣਾ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਅਮਰਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਛਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਚੌਥਾ ਲੱਛਣ ਉਹ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਛੇਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਤਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਠਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੜਪ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਨੌ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ ਆਹੇ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜ਼ਰਦੋ ਚਸ਼ਮ ਤਰ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਨੋ ਕੰਮ ਖੁਰਦ ਨੋ ਖਵਾਬੇ ਹਰਾਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦਸਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਤੂੰ ਨਗੁਰੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਈ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗਲਾ ਸੁਰੀਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਸੀ ਉਦਨ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉਦਨ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰਨੀ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਤੋਂ ਲੇਖ ਪਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ
ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨੀ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਚਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਿਆ ਭੋਗ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਚੜੀਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਢੱਠੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਲਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੜਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਬਚੜੀਏ, ਤੇ ਤੜਫ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗੁਰਾ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਚੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਇਲਾਜ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਉਂਦੀ ਸਹਿ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਏ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੀਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਜੇ। ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜੋਗੇ, ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੂੰ 2-4 ਸਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹੋਗੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਪੜਨਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸੀਰ ਐਸੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੀਏ ਇਹ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਇੰਜ ਡਿੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੜੀਏ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਆਰਨ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੱਠੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਲੁਹਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਏ, ਮਨ ਲੋਹਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚ ਅਗਨ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੀ, ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਨ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤੇ ਤਲਾਗ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਹੋਰ ਮੱਚਦੀ ਏ। ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ, ਸੰਨੀ ਉਹ ਔਜ਼ਾਰ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਹਾਰ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਏ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਮਨ ਲੋਹਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੂਰ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਲੋਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਮਨੂਰ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ, ਸੱਚ ਪੁੱਛ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਪਿਤਾ ਜੀ
गुरु नानक की अगली गल तो सुन लवो, भया मनूर जिहड़ा निकम्मा लोहा सड़ चुका है कंचन फिर होवे वह सोना बन सकता है, पर शर्त एक के जे गुरु मिले तनेहा, जे पूरा गुरु मिल पवे वह सड़े हुए लोहे नूं भी सोना बना दिंदा है। पर किवें बनांदा है? एक नाम अमृत वह देवे तो नानक त्रिष्ट सदेहा, जे नाम अमृत देवे तो सड़े हुए मना नूं भी कीमती सोने वर्गे बना दिंदा है। बाबा अमरदास कह लगा, बचिए गल तो तेरी ठीक है कि सड़े हुए लोहे भी सोना बन सकते ने, पर गल तो उते फिर अटक गई ना, पूरा गुरु मिले कितों, किवें मैनू कोई सोने सोना बना देवे। साध संगत देखो, गुरु के शब्द विच इन्नी ताकत जे, बाणी विच इक प्रमाण हुंदा है गुरु अर्जन साहब जी का, कहिंदे जिहड़ा बंदा दुनिया तो तंग हो जाए ना, जिन्हों संसार दे लोक बिल्कुल पसंद ना करन, कई बार बंदा परिवार तो भी दुखी हुंदा है ते फिर एक आस नाल जींदा, चलो परिवार नहीं निरंकार ते है ना, रब ते है ना, ते गुरु पंचम पिता कहिंदे ने जिहड़ा संसार तो दुखी होया ते निरंकार वल तुर पिया, ते जे निरंकार भी कह के तेरे वर्गे निकम्मे नूं मेरे घर भी थां नहीं, हो जाए किथे, जिन्हों संसार नहीं रखदा वह निरंकार वल जांदा, ते जिन्हों निरंकार कह दे तेनू मेरे घर भी थां नहीं, ओ किथे जाए।

सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितनी कु सूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गया।

सा ना हौ जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया परणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरया परणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरया परम सम्मान योग चवर शतर तखत दे मालक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब कृपालू जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे इस विशेष गुरमत समागम दी हाजरी भर रहे गुरु सवारियो आप जी ने अमृत बचना दा कीर्तन गुरु प्यार वालियां पासों सरवण कीता है। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा दा सदका हजूर दे अमृत बचना दी विचार आपां कर सकीए। खास करके अज सवेरे अमृत वेले जिथे हरमंदर साहिब विचों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रब्बी फरमान नू अकाली हुक्म नू आप जी ने सरवण कीता उथे अज कत्तक दा महीना प्रारंभ होया है। सारे महीने विचों दो गल्लां बड़ियां स्पष्ट ने ते विचार भी आपां अज दे दिन नाल संबंधित ही करनी है। पहला बचन है कि कर्म जो तू इंसान कमारिया है अपने किते हुए कर्मा दा दोष दूसरे दे सिर ना मड़। पर अखीर विच एक कृपा कीती उहने कि जे तू कर्म माड़े कर लेने ते कत्तक दे महीने विच साध संगत गुरु दी संगत दा आसरा ले तेरे अंदर दे सारे चिंता झोरे अपने आप ही मुक जाएंगे। सतगुरु ने दो बचन अज कहे, पहला रोग है फिर उस रोग दी औषधि उस दी दवाई है। रोग की है कि कत्तक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग ते की कर्म कमाया। कहन लगे परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिनमें कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस्थ है रोवे रोज। अखीर विच एक बचन क्यों ने कहन लगे जे तू इस चिंता नू इस झोरे नू खत्म करना है ते फिर एक काम कर के कत्तिक होवे साध संग

दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप प्रणासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करण शरण जाचक प्रतपालन आत्म रस संग रहन कहन अमृत कल ढालन सतगुरु सत सतगुरु तिलक सत लागे सो पै तरे गुरु राज गुरु जगत।

करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसारे खोवै गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सुकहु टल गुर सेवियै एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै।

शरीर नु तो लेन नाल मन ते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेलन कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे। मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

घर विच वेड़े विच सेन विच निम दा दरखत लगाया ते गुआंडी ने पड़ोसी ने आखिया भलिया किसे मिठे फ्रूट दा दरखत लगा दो नाल छाया मान दो नाल फल खान दो भला निम दा दरखत घर विच लगाने दा की फायदा इंदी डाली इंदी टाणी इंदे पत्ते हर एक चीज विच कुड़कदन ते लगाने वाले ने आख्या मैं रोज सवेरे उठ के शायद घोल के इंदियां जड़ां विच पावांगा और रोज गुड़ ते शक्कर जड़ा पानी इस नूं दिया करांगा उस विच घोलांगा जदों इस नूं बीजन लगा इस दी जड़ दे कोल मिश्री दी दली टिका देना ते जदों एनी मिठास इंदियां जड़ां विच पावांगा कि निम मिठास नहीं देगी इंदियां टाणियां विच्चों मैनू शहद दा रस नहीं आवेगा। पड़ोसी ने आख्या तू बड़ा भोला ए तेरे हिरदे विच मुगालत है तेरा घोल के पाया होया शहद निम दा सुभाव नहीं बदल सकता उंदे सुभाव विच कुड़त्ते ने

0: ਜੋਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿਕਣ, ਗਾਜਰਾਂ ਪਏ ਵੇ, ਬੈਂਗਣ ਪਏ ਵਿਕਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜੋਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭੀੜ ਸੀ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਪਾਲਕ ਤੇ ਸਾਗ ਤੇ ਭੀੜ ਸੀ, ਬੈਂਗਣਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਸੀ। ਸਰੋਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਕਤਵ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੋਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਾਇਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰੋਤ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਖੋ ਗਏ, ਖੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੋਰਠ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਰਠ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਰਠ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਰਠ 'ਚ ਗਾਓ, ਬਾਕੀ ਨਾ ਗਾਓ। ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਰਠ ਦੇ 'ਚ ਗਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਗਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਗ ਤਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਲ 'ਚ ਗਾਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ 'ਚ ਗਾਣਾ, ਇਤਨੇ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕੌਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਓਹੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਰਣਾ, ਦਇਆ, ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਨ ਕਰੋਣਕ।
1: ਕਿਸ ਹੋ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਆਰਾਧੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸੀ।
0: ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ। ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ, ਕਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਜਾਣੋ। ਜਿਹਨੇ ਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬਣਾਈਏ, ਚਦਰਾਂ ਪੈ ਚੜਾ ਦੇਣ, ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ। ਕਿਸ ਹੋ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਸਾਲ ਆਈ, ਕਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਾਂ। ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਜੋ ਜੋ ਦੀਸਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲ ਸੀ।
0: ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੋ ਰੁਲਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਦੇ ਚ ਖਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਵ ਖੰਡਨ, ਸਾਭ ਸੁਖ ਨਾਮ ਨਿਧ ਦੇਸੀ।
0: ਉਹ ਜੋ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਨਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਬਦ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ। ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਖਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੈ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ, ਨੌ ਦਿਨ ਰਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਹਰ ਜੀਉ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ।
0: ਹੇ ਹਰੀ, ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਗਾ, ਸੀਮਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕਵਾ, ਉਹ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਜਗਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦੇਂਦਿਆਂ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀ ਸੰਕੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ, ਰੱਜ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1: ਮਾਨਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਕਿਸਕਾ ਮੋਹ ਤਾਜਾ।
0: ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਆਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਕਰਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਰਜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਰਜਾਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਰਹਾ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸਕਾ, ਕਿਸ ਕੀ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈ।
0: ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਕਰਕੇ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਲੋਭੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਰਦਾ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਲੋਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਸੁੱਖ ਮਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਐਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਆ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਨਿਖੁੱਟ ਨਾ ਕਬਹੀ ਜਾਏ।
0: ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਸਨੇ ਚੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਜਪੀਏ ਜਿਤਨਾ ਵੰਡੀਏ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਾ ਘਾਟ। ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। जपांदियां वधेगा ते सही घटेगा नहीं। एक ऐसी दौलत है जो हमेशा वद्दी है। इस वास्ते भाई साहब भाई नंद लाल किसे नू दौलत कहंदे ने, दौलते जावे बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी, दौलत सरमाया ईमां बवद, हर गदा अजरा याद ओ सुल्तान बवद। मनुख कोल मंगदा है, सारी जिंदगी मंगदा रहेगा, पर नंद लाल कहंदे ने जिहड़े रब कोल मंगदे ने बादशाह हो जांदे ने, बादशाह हो जांदे, मंगतापना खत्म हो जांदा है। जिसनू बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह, दौलत सरमाया ईमां बवद, हर गदा अज याद ओ सुल्तान बवद। फिर कहंदे ने गर बजुर्गी बाए दत कुन बंदगी, वरना आखर में कशी शर्मिंदगी। तू बजुर्ग होना चाहना है, रजना चाहना है, महान होना चाहना है, बंदगी कर त्रिपत हो जाएगा, नहीं तो सारी जिंदगी मंगता ही रहेगा, भिखारी रहेगा, जीवन भर मंगता रहेगा, अंदर ख्वाहिशा चलदिया रहनगियां, तेनू चैन जो है नहीं लैन देनगियां। कहंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल दे शरीक जद आनंदपुर साहब पहुंचे ना, उन्होंने दुख बड़ा होया। मुल्तान तो आए सन, नंद लाल भांडे पे मांजदे सन लंगर दे, ते शायद आपनू पता होवे नंद लाल बहादुर शाह दे अतालीक सन, औरंगजेब दे लड़के दे, जो लड़के सन औरंगजेब दे पोतरियां नू पढ़ांदे सन, अतालीक सन, शहनशाहां दे बच्चे, नवाबां दे बच्चे, जागीरदारां दे बच्चे ओ पढ़दे सन। उस वक्त दे बहुत वड्डे अतालीक सन, फारसी उर्दू विच अतालीक कहंदे ने पढ़ाण वाले ने, ट्विटर नू अतालीक सन। एक दिन किधरे कुरान दी आयतां दे इस ढंग नाल अर्थ कीते, अजे शहनशाहियत औरंगजेब दी चल रही सी, पोतरे भी उस दे सन, ते बहादुर शाह नू अजे गद्दी नहीं मिली सी, इह ते बाद च गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी मदद नाल मिली। जद कन्ना विच ओ अर्थ पै गए, औरंगजेब ने मुराद नू कह दिता, ऐसा रोशन जमीर बंदा, ऐसा रोशन दिमाग बंदा हिंदू नहीं चाहिए। बस इन्नी गल कह इशारा कर दिता। अद्धी रात दे वक्त मुराद आया, नंद लाल दे कोल सुते भाई साहब नू जगाया, आख्या मेरा घोड़ा ले लो, नस जाओ, बच जाओ, निकल जाओ, क्यों थोड़ा रोशन दिमाग खतरे च है, थोड़ी रोशन जमीर खतरे दे च है, थोड़ा ईमान खतरे दे च है, तुसी मेरे मित्र हो, मैं मित्रता निभाण दे नाते आया, ये मेरा घोड़ा लो, इस ते बैठो ते दौड़ जाओ, भज जाओ। नंद लाल कहंदे ने मित्रा किथे भज जावां, सारे भारत दे ते राज इस दा ही है, जिथे जावांगा पकड़ा जावांगा, किथे भज जावां, सारी जगह ते इसे दा हुक्म चलदा है। मुराद ने कहा एक थां ऐसी है जिथे औरंगजेब दा हुक्म नहीं चलदा, धन गुरु गोबिंद सिंह दा हुक्म चलदा है। ओ केड़ी थान है, ओ केड़ी जगह है, ओ आनंदपुर साहब है, उथे बज जा। रात नू सफर करदे सन, दिन नू किधरे छुप जांदे सन, मंजिल दर मंजिल तय करके पहुंचे, सतगुरु दे दरबार विच हाजरी भरी, मत्था टेकया, ते कहन लगे महाराज मैं आप जी दे कोल रहना है, इत्थे ही रहना, हुण मेरा दर घर यही है, मेरा सहारा तुसी हो, इत्थे ही रहना। हां महाराज मैं इत्थे रहना, खुशी नाल रहो। तीन चार दिन तो बाद भाई साहब सतगुरु नूं कहण लगे, महाराज जद मैं इत्थे रहना है ते आपने रख लिया ते कोई सेवा बख्श दो मैनू। ते सतगुरु कहण लगे, की कर सकदा है तू, तैनू की आउंदा, पहले दस। महाराज मैं रोशन दिमाग हाँ, मैं रोशन जमीर हाँ, मेरी कलम चो नगमे निकलते ने, मेरे दिमाग तो रब्बी संगीत ते रब्बी गीत निकलते ने, फिलसफा निकलता है, ज्ञान निकलता है, विचार निकलते हैं, मैं चिंतक हाँ, मैं अजीम शायर हाँ, मैं कलम का धनी हाँ, दिमाग का धनी हाँ, जबान का धनी हाँ, रोशन जमीर हाँ, ऐसा मैनु सारे कहते हैं। सतगुरु कहन लगे, तू रोशन जमीर है, हां रोशन जमीर हाँ, दिमाग का धनी है, धनी हाँ, इत्थे रहना भी है, हां महाराज रहना भी है, ते सेवा भी करनी है, हां महाराज सेवा भी करनी है, अच्छा तू बस लंगर दे भांडे ही मांजया कर, बाकी छड। कहन दिल नंद लाल दा बड़ा टूटिया, हद हो गई, मैं दस भी दिता है, शायर हां, अतालीक हां, रोशन जमीर हां, रोशन दिमाग हां, कोई लिखण पढ़न की सेवा दें दे, पढ़ाण की सेवा दें दे, लंगर दे भांडे मांजो, कदी मांजे नहीं सन, दीवान दे लड़के सन, ते आप दीवानगी भी करते रहे, फिर अतालेख बने, हमेशा उच्चे उच्चे रुतबिया ते पिता रहा, ते आप रहे, कदी मांजे नहीं सन। पर सतगुर ने कहा, जे इत्थे रहना ही तो फिर भांडे ही मांजया कर, रोज रोज लंगर दे भांडे मांजदिया और रंगरतड़िया की महफिल च रेंद्या होया, रंगे हुए मनुखां की महफिल च रेंद्या होया, मन की कालक हंकार मिटदा गया, मिटदा गया, मिटदा गया, सही मायने च भांडे मांजना मन मांजना हो गया, श्रद्धा नाल करे मनुख ऐसा हो जाता है। फिर माहौल ऐसा सी रंगरतड़िया की महफिल, अभ्यासियां दी महफिल, शरीकां नूं किधरे पता चल गया, सौरा परिवार दुखी होके मुल्तान तो आनंदपुर साहब पहुंचया, कोई हद हो गई, गुरु गोबिंद सिंह ने कदर ही नहीं की थी, इन्ना रोशन दिमाग बंदा, इन्ना पढ़ा लिखा बंदा, नवाब ते शहनशाह जिन्हों दीवानगी बख्शते रहे ने, सतगुर ने कदर नहीं की थी। शरीक जद पहुंचे ते नंद लाल नूं समझांदे ने, और रब दी नेत कोई रब नहीं करिश्मे करने हुंदे ने, जद शरीक पहुंचे सन उदो भी नंद लाल भांडे ही मांजदे पए सन, काले हथ भिजे हुए कपड़े देख के शरीकां ने समझाया, कोई गल नहीं, कोई खतरा नहीं, हुण तुसी साडे नाल मुल्तान चलो, गुरु गोबिंद सिंह ने थोड़ी कदर नहीं कीती, भांडे मांजण ते रखे, लंबी चौड़ी जद नसीहतां करन लग पए ने, तो हुण नंद लाल दे बोल सुनना, नंद लाल अपने शरीकां नूं की कहिंदे ने, नसीहा ता चंद गोही, नसीहत करन वाले हो नसीहत ना करो, उपदेश देण वाले हो मैनू उपदेश ना दो, नसीहा ता चंद गोई, कहिंदे ने शरीक समझा रहे सन, नंद लाल जवाब पे देंदे सन, पर एक पासे खड़े होके सारी गुफ्तगु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सुन ली, सुने पहुंच गए, ते हुण शरीकां दे सामने जो सतगुरु कहिंदे ने नंद लाल नूं, असी तैनू कोई चंगी सेवा नहीं दे सके, तू कलम दा धनी, दिमाग दा धनी, रोशन जमीर, असी तैनू कुछ नहीं दे सके, तैनू ते बहुत कुछ देना चाहिदा सी। शरीकां दे सामने सतगुर इंज कहिंदे ने, असी तैनू कुछ नहीं दे सके, ते हुण नंद लाल जो कुछ कहिंदे ने ये सुन लेना, मैं आखिरी पंक्तियां छेती छेती समाप्त करां, समा हो गया। नंद लाल जो हाथ जोड़ के बेनती कर रहे कि कीमती पंक्तियां ने, बड़ी कीमती पंक्तियां ने दीवाने गोया दिया। गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस, हवाए सल्तनतो व जौ के कज को लाही नेस। ए मेरे बादशाह, कोई भूल के भी थोड़ी गली चो लंघ जाए ना, वो दो जहाना दी बादशाहत नु ठुकरा देंदा है। ते जिहड़ा लंघ जाए वो इतना माला माल हो जाता है, मैं ते बुआ मल के बैठा होया, मैं ते दर से बैठा होया, मैनू केड़ी चीज की कमी। जिहड़ा लंघ जाए ते माला माल हो जाता है, ते जिहड़ा हर वक्त कदमां दे चरेंदा पे है, उहदे कोल केड़ी चीज की कमी। गदाए कुए तोरा, तेरी गली का जिहड़ा मंगता है वह भी बादशाह बन जाता है, तेरी जी गली का जिहड़ा भिखारी है वह भी शहन शाह का शहन शाह बन जाता है। गदा है, गदा कहते ने भिखारी न, कुए कहते गली न। गदाए कुए तोरा मेले बादशाही नेस, हवाए सल्तनत वा जाओ के कज को लाही नेस। ए मेरे पादशाह, भुल के कोई मंगता थोड़ी गली चो लंघ जाए, दो जहाना दी बादशाहत नु ठुकरा देंदा है, इतना माला माल हो जाता है, ते महाराज फिर मैनू की कमी है, मैं ते दर मल के बैठा है, मैं ते इस जगह बैठा है। कहिंदे ने कृत कोल की मंगना, करते कोल मंगना। कृत कोल मंगता है जन्म तो लेके मरण तक मंगता ही बनया रहेगा, करते कोल मंगता है बादशाहां दा बादशाह बन जाए, शहनशाह का शहनशाह हो जाएगा। और कितना ही जगत नु समझाओ कि गुरु कोल नहीं मंगते, बंदियां कोल ही मंगते, कि परमात्मा अगों प्रार्थना नहीं करते, अपने दुखा के निवृत्ति की इधर उधर रोला पाते ने, और जेड़े आप दुखी होंगे ने उन्होंने अगों जो है फरियादा करते ने, जोदड़ियां करते ने। सतगुरु देव जी महाराज इत्थे फरमान पे करते ने, हे प्रभु तेरे कोल जे मंगी है तेरी दात दे नाल ही रजेवा, उंज रजेवा नहीं है। हाँ जी,
1: आनंद भया सुख सहज सुमाने, सतगुर मेल मिलाई।
0: जी प्रभु, तेरी दात रजा दें दिए, महान बना दें दिए, शहनशाह का शहनशाह बना दें दिए, तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है, नौनिद नाम की प्राप्ति हो जाती है, खेड़ा ते खुशी मुयसर हो जाती है, लोभ अंदर दा शांत हो जाता है, मिट जाता है। हाँ जी,
1: मन नाम जाप नाम आराध, आन दिन नाम वखाणी।
0: हे मन, तांते तू अन दिन नाम जप, नाम दे जो है ध्यान जोड़, दिन रात नाम ही जप, नाम ही जप, ना मंग मनुख कोल। हाँ जी,
1: उपदेश सुन साध संतन का, सब चुकी कान जमाणी।
0: संत जनां दा उपदेश सुन, गुरु पीर पैगंबरां दी बाणी सुन, ताकि जमां दी मुथाजी, लोकां दी मुथाजी तेरी मिट जाए, बंदियां कोल मंगना तेरा मिट जाए। हां जी,
1: जिनका ओ कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी।
0: जिनां दे उत्ते रहमत हो जांदी है, कृपा हो जांदी है, पुरबले संजोग आउंदे ने, ओ प्रभु फिर तेरी बाणी नाल ही जुड़दे ने, ते तेरे कोल ही मंगदे ने। हां जी,
1: कीमत कौन करै प्रभ तेरी, तू सर्व जीआं दयाल।
0: हे प्रभु, जो तेरी दात है उहदी की कीमत, ओ सीमा दे च नहीं है, तेरा दित्ता होया सीमा दे च नहीं है, असीम है, असीम है। मैं ऐसा देखे, अगर कोई अनुभवी कवि है तो वह भी कह देंदा है, कविता का अंत नहीं है, असीम है, असीम है। संगीत का अंत नहीं है, असीम है, असीम है। ज्ञान का अंत नहीं है, असीम है, अजीम है। ते हे परिपूर्ण परमात्मा, पदार्थों का भी कोई अंत नहीं है, असीम ने, असीम ने। तू असीम है, तेरिया दाता भी असीम ने। हे परिपूर्ण परमात्मा, कौन कीमत पावे, कौन नापे, कौन तौले। तू मनुख नु महान बना देंदा, क्योंकि तेरी दाता असीम ने, जिन्हां दा कोई मुल नहीं, कोई कीमत नहीं।
1: सब किछ कीता तेरा वरता, क्या हम बाल गोपाल
0: हे परिपूर्ण परमात्मा सब कुछ तेरे कृत है असी ते तेरे बच्चे हाँ तू साडा पालनहारा है पिता दी तरह है असी तेरे बारक हाँ हाँ जी
1: राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यो पिता पूत कृपाला
0: भावे लख गलतियां करदा है बच्चा प्यो फिर भी कठोर नहीं आंदा दया दे घर विच आके बच्चे नू गल नाल लांदा सारियां दातां जो है देना है हे प्रभु तेरे बच्चे आ सदीवी गल नाल राई रख इस तरह साडी पालना कर जिवें शरीरक पिता अपने बच्चे की देख रेख करता है हे प्रभु हर वक्त अपने चरणा नाल जोड़ी रख हर वक्त अपना प्यार बख्शी रख ताकि असी हर वक्त तेरे नाल जुड़े रहिए इतनी सेवा प्रवान काफी समा हो गया बाकी विचारा कल दूसरी बेनती है कल की कथा तो बाद दोपहर का दीवान हमेशा बाबा दर्शन सिंह जी का डेरा घनूपुर का लै जिन्हां नाल दास का बड़ा पुराना प्यार से 30-35 साल तो बड़ा पुराना प्यार चलता आया बड़िया खेड़ा मैं उन्हां दे नाल देखियां उन्हां कोल देखियां बड़े अनुभव तो हुण उन्हां दी थां ते बाबा गुरदेव सिंह जी ने 2 बजे तो लैके 6 बजे तक का दीवान कल का कन्नूपुर कॉलेज सजेगा दास के नाल जिहड़ी 3-4 जथे आए हुए ने प्रचारक आए हुए ने कवि सज्जन ने ये सारे उत्थे हाजरी भरणगे ते दास भी 4 to 5 उत्थे कथा जो है करेगा सारी संगतां लई 2 बजे तो ही गुरु का लंगर चलता रहेगा 6-7 बजे तो जिन्हां जिन्हां संगतां ने जाना है जिन्हां कोल समा वैसे कल इतवार है ते बाबा जी दी तरफों गड्डियां भी ते सरां दे बाहर आ जाणगियां जिन्हां ने जाना है वह गड्डियां लै जाणगियां ते वापस भी ले आणगियां हुण जिन्हां दा शौक होवे वह 2 बजे इत्थे पहुंचण की कृपालता करन बाबा जी दे ट्रक गड्डियां ते कारां बसां आ जाणगियां वह संगतां नूं डेरे लै जाणगियां ते वापस लै आणगियां इतना प्रोग्राम आप नोट कर लेना फुल सुख दी शमा वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।

एकत्र करी है माया, दान पुण्य नहीं संतन सेवा, एक ही काज ना आया, कारया भरण सवारी सिज्जा, कामन थाट बनाया।

सच सुन सकते हैं। मैं ये लफ्ज भी कह मैं थानू गुरबाणी की सच्चाई ना सुनाई दे रही है ना दिखाई दे रही है। तो मैं गुरबाणी की रोशनी कहा जा सकता अंधे अज इस घटना अंदाजन 25-26 साल हो गए शायद इस तो भी ज्यादा।

हेलेन हो गए। किरत कर दया कीर्ति नहीं भुले, ते जो किरत कर दया कीर्ति नहीं भुलिया उदी किरत भी धर्म है, उदी किरत भी बंदगी है। अक्सर पूर्ण पुरखां दा धंधा भी धर्म आंदा है, पर अधूरे मनुखां दा ते धर्म भी धंधा आंदा है। उना दे धर्म दे चों भी संसार दी बदबू आउंदी है, जदके पूर्ण मनुख दे धंधे दे चों भी निरंकार दी सुगंधी आउंदी है, खुशबू आउंदी है, महक आउंदी है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जद इस ढंग नाल बैरागमई अवस्था दे अपनी जिंदगी बतीत कर रहे ने, तो दूर दृष्टि दे नाल समग्र जगत नू वेख्या है। आप नू जल्दी सब प्रथमी दिस आई, हर पासे नैतिक दुनिया विच, धार्मिक दुनिया विच, समाजिक दुनिया विच, आर्थिक दुनिया विच आप नू अग लगी हुई दिखाई दित्ती। नाम दी मशक लैके इस अग नू बुझाण दा तहिया आपने सुल्तानपुर दे च ही कीता। लंबी सोचनी तो बाद आपने लंबियां उदासियां नू जन्म दिता। एक एक उदासी 12-12 साल दी। कई दफा प्रश्न खड़ा होंदा है कि गुरु नानक ने इतना भ्रमण क्यों कीता। इतिहासकारां दे कथन अनुसार गालबन 82,000 मील दा एक पैदल सफर बनता है। इतना भ्रमण, इतना देश देशांतरां दा रटन, तीर्थां दा भ्रमण, शहरां दा भ्रमण, जंगल ते ब्याबाना दे सूफी संतां दे डेरियां दे महात्मा लोगां दी संगत, थां थां ते आपने भ्रमण कीता और पहुंचे ने। एक सवाल खड़ा होंदा है, इतना भ्रमण गुरु नानक ने क्यों कीता? तो इस प्रश्न दा इक्को एक उत्तर है कि गुरु नानक दे अंदर एक दुख सी, एक तड़प सी। तर्क खड़ी होवेगी, जिदे अंदर दुख सी ओ जगत नू की दे सकदा है, जिस दे अंदर तड़प सी ओने संसार नू की देना है। पर इसका एक उत्तर है, मसलन बच्चा बीमार है, रात दा वक्त है और ताप करके बुखार करके बच्चा बेचैन है, पर कोल बैठी मां भी बेचैन है। बच्चा ताप करके दुखी है पर मां भी दुखी है। बच्चा ताप करके सो नहीं रहा पर नींद मां नू भी नहीं आ रही। पूछया जा सकता है इस मां कोलों, बे ताप ते बच्चे नू चढ़िया, तैनू ते नहीं, तू आराम नाल सौ जा। पर मां ने यही आखना है, नहीं मैं नहीं सो सकती। क्यों? जेड़ा ताप बच्चे दे तन नू चढ़िया होया उही ताप मां दे मन नू चढ़िया होया। बच्चा तन करके दुखी है, मां मन करके दुखी है। बच्चे दे ताप नू जद मां ने अपने हिरदे विच वसाया तो ओ सारी रात चैन नाल सो नहीं सकी। एक बच्चे दा दुख, ते जद उस दुख नू हिरदे विच वसाया ते मां सारी रात चैन नाल सो नहीं सकी। ते जद सारी दुनिया दा गम, सारी दुनिया दा दुख ओनू गुरु नानक ने अपने हिरदे च थां दित्ती तां चैन नाल सुल्तानपुर किस तरह रह सकदे सन, ओ आराम नाल अपने परिवार विच किस तरह रह सकदे सन। आप नू सारे दा सारा संसार जलदा होया दिखाई दिता। आपने रटन आरंभ कर दिता, ते आप दे रटन विच पहले चोटी दे तीर्थ ने। तीर्थां ते ही रटन क्यों कीता? पहली उदासी विच गुरु नानक देव जी महाराज ने, दरअसल तीर्थ धर्म दे चश्मे सन, ते जे चश्मा ही गंदा है ते लोगां नू पानी गंदा मिलना सी। इस वास्ते गुरु नानक ने पहले चश्मियां नू निर्मल करन दी सोची, तो थां थां ते आप तीर्थां ते पहुंचे, ते तीर्थां दे मुखियां नू सच दी गल सुनाई, सच नाल जुड़न दा ढंग दसिया। सच की है, उदी होंद की है,
ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ